सचवदे सेवको दे मोहमाय के संगना ले मन में रखे हर हर एक अंधकार दीपक बरगास नाने ब्रह्म दुख तैते न से तब तुम्हारे ठांड वर्ताये नंद प्या दुख नाठे पाए जन्म मरण के मिटे देसे साधु के पूर्ण उपदेश पहो चुका निरपो है बस सकल ब्याज मंत कह न सह जिसका साधन कृपा तारे सा संगम नाम रारे तिथ पाए चुके ब्रह्म गमन सुन्नान कर सर्वन

द्रव्य रूप रंग पे प्रकाश आदि के संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबा नानक बलिहारी सुलोक साथ न चाले बिन भजन बिख्या सगली चार हर नाम कमावना नानक एहो धन सार स्पदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पासमित विसार चरण कमर दमायुर धार करण कारण सो पर समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत एहो तन संचो हो भगवंत संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माय सर्व रोग नानक मिट जाए जिस धन को चार कुंडता में सो तन हर सेवा ते पाव है जिस सुख नित बाछ मीत सुख साधु संग परीत जिस बाखो करा भली करनी सासु बाप हर की सरणी अनको बावी रोग न जाए रोग मिट हरे औखद लाए सर्व धान मेरे नाम धान जप नानक दर के परवान मन पर बोध हर के लाए दैद तावते आ बैठाए ताको बिघन लागे कोय जा कर देव से हर सोए

काटे जम्बा से तात विचार कहे जन साचा जन मरे चौका चौका चावा गुण मिटे प्रभ से वाप त्याग शरण गुर देव रतन जन्म का हुए उदार हर सिमर पुराने उदार अन को पावन छूट नारे सिमर सात वेद विचारे हर के भगत करो मन लाए मन बचन नानक फल पाए संग न चाल तेरे तना तू क्या लपटा मैं मूर्ख मना सो तुम्हें कुटाम बरबिन

सदा प्रभु के गुण गाव सा सा प्रभु तुम्हें त्या वचन कमल सोला के प्रीत भक्त करो प्रभु की नतनी ते कोटे को आधार नानक मांगे ना प्रभु सार प्रभु के दृष्टमा सुखोय अरस पावे बिरला कोय जन जाख्या से जन द्रविता ने पूर्ण पुरुख ने डोला ने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजय चाव साध के संग पर शरणान सब त्याग अंतर प्रकाशन दिल विलाग बड़पागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुखोय सेव की मनसा पूरी पै सदगुर ते निर्मल मत ले जन को प्रभ हो दयाल सेव की नो सदा निहाल बंधन काट मुगत जन पया जन मरण दुख भ्रम गया यजमे सरदा सा पूरी राम रिया सा संग जोरी जिसका सा दिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाये सुख मित्र काल न पाने सुख मित्र जय किया जाने सुख मित्र जन सब कुछ दिया सुख मित्र जय जीवन जिया सुख मित्र दे अग्न में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे सुख मित्र दे बिकते काटे जन्म जन्म का टूटा कांडे गुरु

हम निर्गुण्या नेत्यादान नान तुमरे स्वर्ण पुरुष पारुग वान सर्वैकुंठ मुक्त मोगपाय एक नमक हर के गुण गाय अनिकराय भोग बड़े आय हर के नाम की कथा मन पाय बहुपोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकर्णी सुभ तनवंत हृदय पूर्ण गुरुमंत्र।

पशुपदी जब कार्य कथन दृष्टिता पापन तब गते होता जवतारी आपन सुन सुमा तब बैर ब्रो के संकमा जब इसका वरण छेन्ना जब तब हर्क शोक हो कि सभी आपत

सुकौगनी दवे कर गम अपार्थव नर्क सुर कौ कौन अवतार दव निर्गुण प्रवसाय सबाय तब शिव सगत कहो कित ठाय दव आप अपने जो तरह तब कवन डर कवन कत डर अपन चलता आप करने हर नानक ठाकुर गम अपार अपना सुख अपने असंता जन मन कहो कहा बिना सन जप

जी जंतर सब ताके आद दीन दयाल अनाथ को ना जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो विचारे तिस राजवर कांको दाए सब चरे एक निरंजन रा

दुर्लभ देखा करो दार अमृत वचन के गुण गाओ प्राण तन का यह सुहाओ आठ पैर पपेखो नेरा मिटिया ज्ञान मिटे अंधेरा सुनबदे सिर दे बसाओ मन छे नानक पल पावो हलत बल दुले सुवार राम नाम अंतर तार पूरे गुर की पूरी दिखया जसवन बसत साहिब परिख्या मंत्र नाम जपो लिवलाए दुख दर मंत्र पोदाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगाह निभा खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माए नानक बोन आवै जाए तिस्त दूर खां को जाए उभरे राखन हर त्याय निरपो जपै सगल भौ मिटै प्रभु कृपा ते प्राणी छुटै।

पूरा मत पूरी अमरा जाके दृश दर्शन पेगत उदरस श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सबल दर्शन सुंदर अर रूप तन सेवा से परवानंतर दमे पर प्रधान जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट न आवद काल अमर पहे अमरा पद पाया सा संगनान करते आया सुरो ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंधेर बिना सो हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन पर गा सष्टपदी संत संगंतर प्रवटिठा ना प्रभु काला का मीठा सकल समग्री एक कटुमायन करंगना निर्दिष्टाय नौन अमृत प्रभु का नाम देहि में इसका विश्राम सुन समाधन तैनात कहना जय अचल विस्मा तिन दिखा जिसाव दिखाए नान तिजन सो दीपाए सो अंतर सो बाहर आनंद गड़गड़

वेद ब्रांच मृत में देख सी और स्वर्ण खतन में एक बाणी प्रभु की सबको बोले आप डोलना कब हूं डोल सर्व

किने काज करा पला कर दो त्याद ने किया पै जाने अपने जी के आप साज तारे सब साच ओत पोता अपने संगलाए ताकि तुम कहीं न जाए दूसरो तसो जी पाए जिसका किया सा प्रवान गुरु प्रसाद नानक हो जान जो जाने ते सदा सुख होए आम लाए ले प्रसो यतनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान धन धन धन जन आया दुबरसा सब जगत राया जन आवन का यह सुहाओ जन कह संग जित आवे नाओ आ मुक्त मुक्त करे संसार नानक ते जन को सदा नमस्कार सलोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अस्पति पूरे गुर का सुन बदेश पार ब्रह्म निकट कर पेग सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर के उतरा चंद आसन त्यागो तरंग संजना के तोर मन मंगा छोड़ बेनती करो सासंग गगन सागर तरो हरतन के पल्ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहजन सासंग पद परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित्रित नारायण एक एक रूप जाके रंगा ने गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का हे आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलेख लाल रतन संत कमावत होत उदार आवत रह लो कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय सब नादवा जय सुन सुन आनंद करे प्रभु का जय प्रगटा गोपाल महात के माथे नानक गुदरे तिनके साथे शरण जो सुन सरणी आए कर कृपा प्रवाह मिलाए मिट गए बैर पय सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पय गुरुदेव पूर्ण हो सेव की सेव आल दिनदार विकारते रहते राम नाम सुरसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक ने भी खेप हमारे प्रभु की ओ सत्करो संमी सावधानी कागर चीत सुख मनि सहज गोविंद गुरु नाम जिस मन बसे तो निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए परधान पुरख प्रगट सब लोए सब त्यो छपाए आसान वर्ण होवे आमन जान हर जन खाड़ चले जन सोए नानक जैसा प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तब जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मैं सकल ते उदास सुंदर चतुर तत्कता समदर्शी एक दृष्टिता ये पर जन के मुख बने गुरु नानक नाम बचन मन सुने हे निदान जपे मन कोय सब जुग में ताकि गतोय गुण गोविंद नाम तुनवाणी सिमर शास्त्र वेद बखाणी सुगल मता केवल हर नाम गोविंद पद के मन विश्राम कोट अपराध साध संग बैठे संग कृपाते जमते जुटे जाके मस्त करम प्रपाए साधु शरण नानक ते आए जैसे मन बस

गुरु प्यारी साध संगत, गुरमुख प्यारे जो सतगुरु का हुक्म बजाते हुए स्वासा रूपी पूंजी नूं पूरी करदे आं, गुरु चरणा विच जा बिराजे हन। अज उन्हां दे सारे परिवार ने साख संबंधी सज्जन मित्र रल मिल के गुरु चरणा विच अमृत बाणी श्री सुखमनी साहब जी दे जाप करवा के शब्द कीर्तन राही अरदास बेनती करन वास्ते सतगुरु दे चरणा विच हाजरी भरी है। सतगुर बख्शिश करन दिवंगत आत्मा नूं सतगुर अपने चरणा च सजीव काल निवास बख्शन, पिछे परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शन, प्यार इतफाक बख्शन। इतनी हाजरी प्रवान करदे होए आओ अनंत साहिब दा जाप करिए, उस तों बाद अरदास विच सारे जुड़ के सारयां ने अपने हिरदे चों गुरु चरणा च अरदास विच शामिल होना है। सो आओ करो।

भरा जब आए सुख प्रभु को पयो जन्म धरा जग आए अब मैं कथा संक्षेपते सब हूँ कहत सुनाए कब बाज दोहरा ठाट पयो मैं जोर कर बचन कहाँ सिर न आए पंथ चला तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान गाओ नितुड़ ध्याय हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फल पामेंगे भगवान दोहरा कालपुर की देह मो कोटक विषण महेश कोट इंद्र ब्रह्मा गिते रव सस गुरु जरे दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब गो

एक ना मान्यो सीमृत शास्त्र वेद सबाए बहुभेद गहया मेघ ना जान्यो श्री सपान कृपा तुमरी कार मैं ना गहयो सब तो हे बखान्यो।

राम करी महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार भरिया शब्द गावर आइया।

तेरे दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी, सोख्यो मनो में सारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा है, करता तेरा सब कुछ है, जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन मसावे नाम जिन कै मन मसिया, वाजे शब्द घनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा है। साचा नाम मेरा आधार साज नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु बिठाओ, जिस दिया ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारो। साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द घर सभग है, घर सभग है शब्द वाजे कला जित कर धारिया, पंच दूत वास कीते काल गंड कुमारिया, तुरगर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर के लागे, कहे नानक त सुख होवा तित कर अनहद वाजे, अणत सुनो मट भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म ब्र पाया उतरे सगल बिसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी

तम संसार चरण लगत रहिया सब नानक ब्रह्म बसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनू जो की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेहरामत होई सतगुरु सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै ता जीवा तन मन थी वै हरिया पौड़ी जिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे उथै तेरी रख अग्नि उधर माहे सुन गए जम के दूत नाहे तेरा छड़ जाहे भौजल बिखमस गाह गुर शब्दी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल में एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सैनु कृपाल संभाले साह साह बिरथा कोए ना जाए जे आवै तो दया है सलोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना देवा जब गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर सेती रथिया दरगाह पाइए ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनु एवा दे जग में उत्तम काटिया है विरले के ई के ए महला पंजवा रखे रखनहार आप उभारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन

पूरन कर्म होए प्रभ मेरा, सो कहो टल गुरु सेविया, अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसियाए गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, सतनाम।

इतनी सेवा विवान करने जी कीर्तन करते बुला दी माफी बख्शन भज सपाल सिंह जी श्री पौंटा साहब जी वाले आप जी कीर्तन राही साढ़े सात तक जोड़ने उपरंत हर ऐतवार की तरह साढ़े सात तो साढ़े अठ तक थोड़े नौ तक सिमरन होंगे संति रूप से हाजरी भरनी जो कीर्तन जुड़ना करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का।

हरि अमृत भरे भंडार, सब किश है घर तिसकै बलराम जियो। बाबुल मेरा वड समरथा, करन कारण प्रभ हारा, जिस सिमरत दुख कोई न लागै पौ जल पार उतारा। आदि जुगाद भगतन का राखा,

हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी सफल दर्श भेटिया गुर पूरा नानक सद बलिहारी समलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाहो नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गह कंठ लाए मिले अंतर जामिया सत संतोख वजे वाजे अनहदा चुनकारे सुन पै बिनासे सगल नानक प्रभ पुरख करने हारे उपजिया तत ज्ञान सहुरे पिये एक हर बलराम जियो ब्रह्मे ब्रह्म मिलिया कोय ना साके भिन्न कर बलराम जियो बिसम पेख बिसम सुनिए बिस्मार नदरी आया जल थल महियल पूर्ण स्वामी घट घट रहया समाया जिस ते उपजिया त समाहे समाया कीमत कह

अमृत नाम हृदय माहे समाए। प्रभु जी बसै साधु की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु को सिमरे से धन बनते, प्रभु को सिमरे से पत बनते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बेमहताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरंते लागे जन आप दयाला, नानक जन की मंगेर वाला। प्रभु को सिमरे से पर उपकारी, प्रभु गावो सिमरे तन सदबलहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तन सुख बेहावा, प्रभु को सिमरे तन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तन आनंद कनेरे, प्रभु गावो सिमरे बसे हर नेरे। संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरा भाग, प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू ना छूरे, प्रभु कै

हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध गमात हर जल के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन किन्नो दान मान तन रंग तेरा।

शुद्ध कावे काची पीत मन हर के नाम की महमा ऊच नानक नाम द्रे पसद बहमूच बहुत सियाण जमका भाव व्यापै अनक जतन कर त्रिश ना त्रापै पेख अनेक अगन नहीं बुझै कोट भाव दृगय नहीं सिजै छूट सनाही ऊब पयाल मोह व्यापे माया जाल अब्र करतूत सगली जम डालै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जब दुख जाए नानक बुलै सह सुभाए चार

नाम है पत जाए अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावाए, एक वस्त गान विखोट गवावाए, एक पीना दे दस भी हर ले, तो मूढ़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर से हो ना ही चारा,

न भया। ब्रह्मज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टमृत भर्षी, ब्रह्मज्ञानी बंधन दे मुगता, ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्मज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्मज्ञानी एक प्रयास, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाह, ब्रह्मज्ञानी बारुगार माह, ब्रह्मज्ञानी का नाही तंदा, ब्रह्मज्ञान ले दावत बंदा, ब्रह्मज्ञानी का वैसो पला, ब्रह्मज्ञानी सफल फला, ब्रह्मज्ञानी संग सकल उदार।

थियो जो तस भाव है सोई फन थियो कबू ऊच नीच मह बसाए कबू सोग हर रंग हसाए कबू निंद चिंद व्यवहार कबू उबकाश पयार कबू बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावन हार कबू नृत्य कराय बापांत कबू सोए रहे दिन रात कबू मां क्रोध बिकराल कबू सर्व की उतरवार कबू भय भय बड़ राजा कबू पिघारी नीच का साजा कबू अप कीर्त में आवै कबू भला भला कहावै ज्यो प्रभ राखे तभी राह गुर प्रसाद नानक सच कहै कबू होए पंडित करे बखियान कबू मोहन धारी लावै ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू से साधक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग होए जिया अनक जोन परमै परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावै ज्यो पर भावै तब न चावै ज्यो तस भावै सोई हुए नानक दूजा अवर न कोय कबू सा संगत।

अजान कौन बसताई तेरा संगल पट रहे हो रस लोभी पतंग राम नाम जब हृदय माहे नानक पात सेती कर जाहे। जबकर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज तज मान लियो मन में मोल राम नाम हृदय में थोल। लाद के बसंते संचाल प्रत्याग बिख्या जंजाल धन धन कहे सब कोय मुख उजल हर दरगे सोए। ए वापार बिरला वापारे नानक थाके सदबलहारे चरण साध के धोए तो पीओ अर्प साधु अपना जियो। साध की धूर करो इशनान साधु पर जाइए कुरबान साध सेवा बटभागी पाइए साध संगर हर कीर्तन गाइए। अनक बिघन दे साधु राखे हर गुण गाय अमृत रचाखे ओढ़ गही संत इंद्र आया सर्व सुख नानक दे पाया। मृतक को जी बालन हार भूखे को देवत आधार सर्वनिधान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाए।

नगमन प्रकाश अष्टपदी संत संग अंतर प्रभुठा नाम प्रभु का लागा मीठा सकल समय करिए कस घाटमा है अनग्रंग नाना दृष्टा है नावनित अमृत प्रभु का नाम देहि महसगा विश्राम सुन समाद अनत नाथ कहना जाइय चर्च विस्माद तेन देखया से आप दिखाए नानक तजन सो जी पाए सुंतर सो बाहर अनंत कटर व्याप रहा भगवंत तरण माया गाज पयाल सर्वलोक पूर्ण व्रतपाल बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आ गया था सब कर्म

गावष्टपति पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर भेग सा सा सिमरो गोविंद मन अंतर की उदरा चंद आस नित्या गोत्रंग संतना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सा संग अगन सागर तरहो हर धन के परले हो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुरु गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल भगत बशल सदा कृपाल गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का आधार उत्तम सलोक साध के भजन अमरीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उदार आप द्रय लोके निस्तार सबल जीवन सबल

निदानम। गाविय सुनिय मन रखिय पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाय। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहे आसमाई। गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई।

सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे न सके काल नानक भगता सदा विंगास सुनया दुख पाप का नास सुनया ईश्वर ब्रह्मानंद सुनया मुख साला हनुमंद

आखे बड़े करे वख्याण आखे बरमे आखे इंद आखे गोपी तै गोविंद आखे ईसरे आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव केते आखे आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे।

कह ना सकत केह। अचाल मूर्त अनुभव प्रकाश अमित ओज कहिजे, कोड इंद्र इंद्रान साहे सहान गनिजे।

रूपे नवास्तंग निर्कर्मे नवास्तंग निर्परमे नवास्तंग निर्देशे नवास्तंग निर्पेशे नवास्तंग निर्नामे नवास्तंग निर्कामे नवास्तंग निर्ताते नवास्तंग निर्काते नवास्तंग निर्दुहते नवास्तंग भुहते नवास्तंग लोके नवास्तंग शोके नवास्तंग निर्तापे नवास्तंग थापे नवास्तंग निर्माने नवास्तंग निधाने नवास्तंग गाहे नवास्तंग बाहे नवास्तंग त्रिवर्गे नवास्तंग सर्गे नवास्तंग प्रभोगे नवास्तंग सजोगे नवास्तंग रंगे नवास्तंग भंगे नवास्तंग गमे नवास्तास्त्रमे नवास्तंग जलाश्रे नवास्तंग निराश्रे नवास्तंग जाते नवास्तंग अपाते

अभीत है, अपिहित है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, प्रजांग प्रयाछंद। नमो सर्वमाने स्महति निधाने, नमो सर्वमाने स्महति निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौणे, अनंगी अनाथे नृसंगी प्रमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो

नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वं प्रणासीन रूपे रूपे समस्तोल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद्धकर्ता अदो उर्द अर्दं अगं ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोजपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अपेदी नामं कामं समस्तो पराजी

पवित्राय परथि से आदि से अदृश्य अकृश्य भगवती शांत वय प्रसाद कहते क्या छिज दे सह क्या भिज भेस है क्या गांज कर्म है क्या भांज भरम है क्या भिज लोक कै के दित सोक कै के भूत वर्ण है के विभूत कर्ण के राजं प्रभा है के धर्मं तुझा है के अशोक वर्ण है के सर्वा अपर्ण के जगतं कृति है के

में त्रिपंगी त्रिका में त्रिभग त्रिभा दे गंजे गादे सुभंग सर्भागे सो सर्भा अनुरागे त्रिपुक्त स्वरूप है त्रिपुगत स्वरूप है अछेद है अछूत है के नरक प्रनास है पृथ्वी और प्रवास है निरुक्त प्रभा है दैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है।

आता है। साकं श्री कह मितौ मीक है, सदैव प्रभा है, अजय है, अजा है, भगवती शांत वह प्रसाद के जाहर जहूर है, के हाजर हजूर है, हमेशा सलाम है।

सुरार्दन सुध सुधाधक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतांग डरे डर सांगे अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे पारी पजान के पहु पलि विद न्यावत सीस न जात बिचारे एदे पहे तो कहा पहे भूपत अंत को नागही पाए पधारे जी।

पै संबद सत्रह सहस पनि जय अर्ध सहस फुण तीन कहि जय भाद्रव सुदी अष्टमी रव वारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया।

धरे ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जय रे। मन की मत त्यागो हर जन हुक्म बूझ सुक

समाणी सिद्ध साधक सर तरसे सब लोए पूरे भाग प्राप्त होए सब किश साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाण कोए सच साचा।

0: सतगुर प्रसाद एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
1: चौड़ी महला पंजवा
0: श्लोक महला प

0: गोविंद संग सच भोजन जोड़े, मन रत्ता गोविंद संग सत भोजन जोड़े, प्रीत लगी हर नाम से ए हस्ती कोड़े, प्रीत लगी हर नाम से ए हस्ती कोड़े, राज मिलख खुशियां कणी त्याय मुख न मोड़े, राज मिलख खुशियां कणी त्याय मुख न मोड़े, दर कदे न छोड़े टाटी दर ब्रह्मंगणा, दर कदे न छोड़े
1: नानक मंथन जाओ।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच होवै सिफत खसम दी नूर अरसहों कुरसहों चट्टी।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया।

साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दिया एह वडियाइया। कह नानक सुनहो संत हो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित घर धारिया।

ज्यों जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया किते गनो असंख अवगण मेरिया असंख अवगण खते फेरे नित प्रतिसद भूलिया मोह मगन बिकराल माया तौ प्रसादी घूलिया लूक करत बिकार बिखड़े प्रभ नेर हूते नेरिया